देखने में भोला है, दिल का सलोना, बम्बई से आया है बाबू चिन्नना, फ्रॉम मूवी बम्बई का बाबू। नेक्स्ट टू सिलेक्शंस आर मोहम्मद रफ़ी आशा भोसले ड्यूएट अगेन मजरूर सुल्तान प्रिय एस डी बर्मन लिरिस्ट एंड दी कंपोजर। फर्स्ट वन पवन चले तो उठे नदी में लहर सी, फीचरिंग सुचित्रा सेन, देवानंद एंड बंच ऑफ हर फ्रेंड्स, सिंगिंग एंड डांसिंग अवेन टीजिंग देवानंद, स्टार्ट विथ बेला बोस डूइंग ए टीजिंग doing the teasing the first verse, then Suchitra Sen joins the act, and last minute or so is a great beat with a pace of dancing to match the beat. And the next one of Asha Bhosle Mohammad Rafi duet is Deewana Mastana Hua Dil, Jaane Kahan Hoke Bahar Aayi. Here are the two songs.

ऐसे में कछु कहा नहीं जाए. बाय द वे आई एम प्लेइंग दिस सॉन्ग्स इन द ऑर्डर दे अपीयर इन द मूवी. सो दिस सॉन्ग आई जस्ट प्लेड वॉज नंबर 5 इन द मूवी एंड बिफोर दैट द दीवाना मस्तान वॉज नंबर 4 एंड बिफोर दैट पवन चले तो उड़े उठे नदी में लहर सी 3rd एंड सो ऑन सो फोर्थ. द नेक्स्ट सॉन्ग इज 6th सॉन्ग इन द मूवी मोहम्मद रफी सोलो मजरूह सुल्तान भी एस डी बर्मन अगेन हमिंग ऑफ द ट्यून फॉलोड बाय सॉन्ग बीइंग साथी ना कोई मंजिल दिया है ना कोई महफिल चला मुझे लेके ऐ दिल अकेला कहाँ. पिक्चर एग्नाइजिंग देवानंद वॉन्डरिंग आउटडोर्स सुत्रसेन वॉचेस हिम फ्रॉम अ डिस्टेंस ही इज डिस्ट्रॉट दैट हर वेडिंग इज सेट एंड शी नोज हिज ट्रू बैकग्राउंड एंड हिज ट्रू इंटेंशंस एज आई मेंशन्ड अर्लियर द प्लॉट ऑफ द स्टोरी. हियर द सॉन्ग साथी ना कोई मंजिल.

डम डम डिगा डिगा मौसम भिगा भिगा बिन पिए मैं तो गिरा हाय अल्लाह सूरत आपकी सुभान अल्लाह ग्रेट सॉन्ग फ्रॉम मूवी छलिया बाय द वे छलिया वॉज नॉट ओनली कमर्शियली सक्सेसफुल बट ऑल्सो क्रिटिकली अक्लेम्ड फॉर एग्जाम्पल द बेस्ट एक्टर फिल्म फेयर नामिनेशन वेंट टू राज कपूर बट ही लॉस्ट टू दिलीप कुमार इन कोहिनूर दिलीप कुमार मीना कुमारी मूवी द बेस्ट एक्ट्रेस फिल्म फेयर नामिनेशन वेंट टू नूतन बट शी लॉस्ट टू बीना राय इन घूंघट प्रदीप कुमार भारत भूषण बीना राय आशा पारेख मूवी एंड कपल अदर नामिनेशंस द लास्ट टू सॉन्ग्स ऑफ छलिया फर्स्ट वन इज मुकेश सोलो एंड फॉलोड बाय मुकेश लता मंगेशकर ड्यूएट फर्स्ट वन इज ए सांबर सॉन्ग बिना कर्म 30 इन 1960 मेरे टूटे हुए दिल से पूछो कोई तो आज ये नो लेट मी स्टार्ट मेरे टूटे हुए दिल से कोई तो आज ये पूछे कि तेरा हाल क्या है कि तेरा हाल क्या है पिक्चर इन राज कपूर ने सांबर फिलोसॉफिकल मूड एज हिज लव एक्सपेक्टेशंस आर रुइंड The last one is Meri Jaan kuch bhi kijiye, chahe Jaan Meri lijiye, par dil hame ko dijiye. And the response is, kabhi yaad hame bhi kijiye, kabhi naam hamara lijiye, sapno mein aaya kijiye. Picture in Raj Kapoor in a community group dance kind of setting, and Nutan by herself in a room, reminiscing about her separated husband, played by Rahman, when he left Pakistan or Lahore, for Delhi. Enjoy the two songs.